आओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख। उत भूख खाए चलिए है दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचा नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई,

चल जाइए, तेरा अंत न परावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावा

जो सेवा है दुध जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी से जान जुग मै सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

करता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जोग जोग एको सदा सदा, तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे कर है सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मेंडा साई। जो तौ पावै सोई थीसी,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो आप हाथ दय मोहे बचावहो।

ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो

दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

बैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां।

सत्संगति। बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाचुपति पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद पुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावताए सब थाई हुए सहाय दसवें पाछा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार अंतर के खर्च बोलो जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगनिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए कुपरियां लवाइया चरखियां चढ़े आ रहे नचाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा सी किस तरीके से तिना ही कमाई जाते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा गुरुद्वारा जाते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेताव है चेत आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देश देख की फतेह बृद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे मुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत रुचि मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा शायद जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जो पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात से माल दिता हाँ अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु धन धन गुरु दार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरणा कावना चरदास दार जी आपने बख्शिश की है आपके चरण दार जी बाद पैदा कीर्तन दरबार सजे हैं इस वे संध्या समय जान के आपके चरण सोधदार है रास्ता पाठ किधर कृपा करो हो भुलना चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपालता करो जी अगो तो शोध पित्र बाणी चाली बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी में आप दी बख्शिया दातों में फिर कड़ाप शादी देगा तैयार करे हाथ ने दार आप जी भोग लाओ शहीद प्रसाद शाह संघ की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगा का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो गरीब नवाज दतार जी आप दख्शिया दातों जो लंगर तुट सवारी प्रवान करनी आपके जाना सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चादी करो बख्शो अभी सदा इस अपने चरना सेवा की भावना बख्शन पालता करो गरीब नवाज जी अमृत वे तो लैके दाते आई साफ सकत हाजी दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ सांगतों का दाते सिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो दार सिख कौम खालसा पंथ नूं एकता सुभाग प्यार दी बख्शिश करके सचन रोज दार बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शिया की पालता करो जी गुरु की बनवाज कृपा करो दार दूर दराज कार बैठी लाइव कृपा की सरवण करनिया सारी संगत हाजिया प्रवान करो घड़िया लेके लाओ दतार आवे कृपा की संगत नूं बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह दर संगत माया पीटा कर चरण प्रवान करो मशकर सब जी कमाइया सबल करो कार्ज वाद मददार साफ संगत दिया शुभकामना सरबंधा पूरी करो जी तार मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पितर गुमनामी बख्श कर बरंद अज शाम कथा की हमता वासी आगा बख्शो रेंदे कार सवार के चरण प्रवादी बनाओ सही प्यारे मेरे दिन मेरा आपका नाम चिताव नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने दरवाजा पर वाहेगुरु जी का खालसा।

0: सारंग महला पंजवां धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का उचारण किया होया शब्द सारंग राग विच राहो दियां तुकां विच सतगुरु जी कहिंदे ने त्यायो अंत बार नाम सखा सुखमनी साहब विच बड़ी बार पढ़दे हां जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय। इत्थे सतगुरु बहुत क्लियर लिख रहे हैं, साफ सुथरा बिल्कुल स्पष्ट कर दिता भाई, परमात्मा दा वाहिगुरु दा नाम ही तेरा असल साथी है। जिस मनुख ने भी वाहिगुरु दे नाम नू सिमरिया है, अंत वेले भी उसने जमा तो प्रभु दे नाम ने उस दी याद ने छड़ा दिता। अजामल कौ अंत काल में राम नाम सुध आई, कितना सोहना फरमान है। सतगुरु जी कहिंदे जह मात पिता सुत पाई ना पहुंचे। कई बार साडी रीच हुंदी है, माता पिता भैन भरा उह पहुंच जांदे ने मुश्किल वेले, पर कई ऐसी जगह हुंदी है जिथे ना मां पहुंच सकदी है, ना प्यो, ना भैन, ना भरा। कोई बेस्ट फ्रेंड, सब तो अच्छा मित्र भी पहुंच नहीं सकता। ऐसियां मुश्किलां कई बार आ जांदियां जिथे जमा दी फाही पैणी है। सतगुरु जी कहिंदे उत्थे केवल परमात्मा वाहिगुरु दे नाम ने तेरा साथी बनना है। तहां तहां तो रखा हे भाई, जिथे तेरे मां तेरे प्यो पुत्र भरा कोई भी पहुंच नहीं सकदा, उत्थे उत्थे इह वाहिगुरु दे नाम ने तेरी रक्षा करनी है, तेरी राखी कर सकता है प्रभु दा नाम। इस संसार दा माया दा मोह जो एक अन्ना खूह है, अन्ना खूह है जिस विच कुछ नजर ही ना आए, सूझे ना कुछ। अंध कूप ग्रह में तिन सिमरे, जिस दे उपर प्रभु दी बख्शिश हुंदी है वह गुरु दी संगति आके बैठदा है, ते वह प्रभु दे नाम नू सिमरदा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने भाई माया दे मोह दे इस अन्ने खूह विच पाओ हिरदे घर विच, सिर्फ उस मनुख ने ही वाहिगुरु दे नाम नू सिमरिया है जिस दे मत्थे उते वाहिगुरु दी याद दा सिमरन दा लेख तुरों लिखिया है। खुले बंधन मुकत गुर कीनी, सब तू है तू ही दिखा। उस मनुख दिया माया दे मोह दिया सारियां फाइयां खुल जांदियां हन। गुरु ने कृपा करके उसनू मोह तो खलासी दिवा दित्ती। उसनू इउं दिस पिया कि हे प्रभु सब थाई तू ही है, तू ही है, सब थाई तू ही है। अमृत नाम पिया मन तृप्तया, आघाए रसन चखा। हे पाई, जिस मनुख ने आत्मक जीवन देण वाला नाम जल पी लिया, जिस मनुख ने भी सिमरन च मन जोड़िया ते अमृत पीन लग पिया, गुरु दी बख्शिश नाल उसका मन शांत हो गया, उसकी जीव नाम जल नू चख के रज गई, दुनिया के पदार्थां दियां भुखां उस दियां खत्म हो गई। कहो नानक सुख सहज मैं पाया, गुर लाही सगल तिखा। हुण मन दी तृष्णा, मन जिहड़ा भुखा भुखा करदा सी ना, इह वी लै लवां उह वी लै लवां उस तों वी खो लवां मैनूं इह वी मिल जाए। सतगुरु जी कहिंदे ने गुरु ने कृपा कीती, वाहिगुरु दे नाम दी दात दे के गुरु ने मेरी सारी तृष्णा दूर कर दित्ती, मैं सारे सुख देण वाली आत्मक अडोलता हासिल कर ली। सतगुरु जी कृपा करन सानू सारियां नू जिथे असी रसना दा जाप करदे हां, शब्दां नू पढ़दे हां, सुनदे हां, गाउंदे हां, सतगुरु कृपा करन बाणी साडे हिरदे च वस जाए, बाणी दी विचार पढ़ के सुन के उस उपर अमल कर सकीए। भुलां चुकां दिखे मां। हुण अगला प्रोग्राम नाम सिमरन दा आप जी सरवण करो। सतसंग जी प्यार नाल फतेह बुलाओ।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

औद कटै दिन सुरै नारी, मन गुरमिल का जसवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसह जगाए पियावै एहो रास अकथ कथा तिन जानी।

जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, और तारे जो अंतर नाम सर्व में पिखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो परस सगल निस्तार पैरी, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत, निरंजन दर्स पर तरह रूप न पिख नेत्र, साध की टहर संत संग हित, कर्ण न सुने काहू की निंदा, सबती जने और सुख मंदा, गुर प्रसाद विखे पर हरे, मन की बसन मंदिर डरे, इंद्री जित पन दुगते रहत, नानक कोट मदि कैसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो परसन, विसन की माया ते हुए पहन, कर्म कर धो वे नहीं कर्म, तिस वैष्णो के निर्मल धर्म, काहू फल किसा नहीं बछे, केवल भगत कीर्तन संग्रचे, मान तन अंदर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल, आप दृढ़ व्र नम जपावे, नानक वैष्णव परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन दे बिन सह सगल परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलख होवे, तिस भगवती की बात उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नितनीद, मान तान अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पुर बुद्ध है, राम नाम आत्म सुध, राम नाम सारदस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन नि आवे, वेद प्राण सिमृत पूजे मूल, सुख में जन स्थूल, चहो वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहो वरना में जपे कौ नाम, जो जो जपे तिस की गत होए, साध संग पावे जन को ए, कर कृपा अंतर और तारे, पास प्रेत मुग्द पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जो कुत कित न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिस गय मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दुसंदन पाए तन पाय, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गय प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दत्त को सब सो जी परे, सगल संगात्म उदास, ऐसी जगत नानक रामदास, प्रभु की आगे आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर्ग तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताई साई जोगत, नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के संग निठाओ, जित जित कर रखे तसत न नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभाव सोई फुन हो, पसरियो आप होय अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दी दैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पे निहाल, श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न परावार, नानक रचना प्रभु रची, बहु विध अनक प्रकार अष्टपरि, कई कोट होय पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट बहे तीर्थवासी, कई कोट वन ब्रह्म है उदासी, कई कोट भेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नवत नव त्याव है, नान कर दे कंत न पाव है, कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट आपे का आत्म निकोर, कई कोट पर दर को हेरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया शर्म मारे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो, तेत तित लगना, नान करते की जन करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंकी सर्प पाए, कई कोट पाथ दीर्घ निजाए, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सिर शून्य खेत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुत धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राज तामस सातक, कई कोट

वेद प्राण सिमरत अरसास कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जग किन पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज सब ते निर सब मुदे दूर नानक आप अलिपत रह भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बोजोनी फिरे कई कोट बैठ थी काही कई कोट गले थक पाहे कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चेंते जय जय पाण तेंते रखे नानक सब किश प्रभ के हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म है पार ब्रह्म लहंदे कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिले प्रभ विनाश कई कोट मंग सत संग पार ब्रह्म तन लग रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार बसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार की कुड़की ने भोपांत प्रभ ते होय प्रभ महे समात ता गंध न जन कोय आपे आप नानक प्रभ सोय कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोड दत के पीते सदन हरे को नेत्रे कई कोड नाम रास पीवे आमर पै सद सद ही जीव कई कुर नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को सासा सुमारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्राविक है दूसर नहीं कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल सोए अष्टपदी श्लोक करण कारण प्रभिक है दूसर नहीं कोई नानक तिस बिलहरण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करण जोग ज्योतिष पावे सोए होग किन मह था पुता बनहारा अंतनी किश पारा बारा हुक्मे तार तर रिहावे हुक्मे उपज हुक्म समावे हुक्मे उचनीच व्यवहार हुक्मे नकरंग प्रकार कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहे असमाई प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे तो पात्र तरावे प्रभ पावे बिन शास्त्र रख प्रभ पावे ता हर गुण पख प्रभ पावे ता पत तो दर आप करे आपन विचार दोहा श्रिया गप स्वामी खेल विकस अंतर जामी जो पावे सो कर करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कोह मानुख दे गया हुयावे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ होई तब सब किसले ज्योतिष पावे सोई करे अन जानत बिखिया मैं रचे जी जानत अपनाप बचे परमे पूला दह दिस्तावे निमुख माहे चार कुंट फिरी आवे कार कृपा जिस अपनी भगत दी नानक तीजन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज डाक दृष्ट का सुनावे तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे जाओ को अपने कर बख्शीस ताक लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब दिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगाश अपनी बनता बनाई नानक जीव देख बढ़ाई इसका बल नहीं सहात करन करावन सर्व गुनाथ अग गरीब परा जियो ज्योतिष बाब सोई पुन थियो कबो चनीत में बस कबो शोक हर रंग हस कबो निंद चिंत व्यवहार कबो उपकाश प्याल कबो बीता ब्रह्म विचार नानक आप मिला बनहार कबो नृत्य करे भोपात कबो सोए रह दिन रात
कबहु महा क्रोध विकराल, कबहु सर्व के हो तरवाल, कबहु होय बह बदार, कबहु भिखारी नीत का साज, कबहु अब कीरत में आवे, कबहु पला पला कहावे, ज्यो प्रभ रखे तिव ही रह, गुरु प्रसाद नानक सच कह, कबहु होए पंडित गरीब ख्यान, कबहु मोन तारी लावे ते आन, कबहु तट तीत स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यो सुवागी दिखावे, ज्यो प्रभाव तिव नचावे, जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोई, कबहु साध संगत पावे सुस्थान ते बहुत न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगासु सुस्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रति एक रंग सदा वसै पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल मह दल आई खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। श्लोक

निर्मल निर्मल तेरी वाणी, काट काट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन पर सो जनो तरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, राष्ट्रपति संत का दुख नर जा कट, संत का दुख न जमती नहीं छूट, संत का दुख न सुख सब जाय, संत का दुख नरक में पाए, संत का दुख न मत होए मलीन, संत का दुख न शोभत हीन, संत के हथे को रख न कोई, संत का दुख न थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी कर, नानक संत संग निंदक पीतर, संत का दुख न तीमुख पवे, संतन का दुख न कागज लवे, संतन का दुख न सर्प जोन पाए, संत का दुख न त्रिगत जोन करवाए, संतन का दुख न तृष्णा मह जल, संत का दुख न सब कुशल, संत का दुख न तेज सुब जाय, संत का दुख नीच न जाय, संत दुखी का थाओ को नाही, नानक संत पावे ता ओहि पीकत पाहि, संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाए, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विरोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तो उसका पी हो मुख, संत का दुख सदा अपवित, संत का दुख किसा का नहीं मित, संत के दुखी को डान लाग, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मर, संत के दुख न सुखती डर, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत पावता ले मिलाई, संत का दुखी अदबी तित टूटे, संत का दुखी कित काद न पहुंचे, संत का दुखी को ध्यान परमाइय, संत का दुखी उजड़ पाइय, संत का दुखी अंतर तीत होता, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की डट किश नाही, अपन बीडा पे ही खाहे, संत के दुखी को अपन न रख न हार, नानक संत बावता ले उबार, संत का दुखी इं बिललाय, ज्यो जल विहोन मछले तरफ डाय, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाप के ईदन नहीं त्रापै, संत का दुखी छूटे केला, ज्यो बुज्यो बुआड तिलखी तुम्हें दुहिला, संत का दुखी तरम ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंद का तुरही पेया, नानक डोते से पाव सोई थे, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिल सजाए, संत का दुखी सदा से कही, संत का दुखी नाम न जिवाई, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ तले निराशा, संत का दुख न तृष्टा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, प्याग कृत न मिटे कोय, नानक जान सच्चा सोई, सब कट दिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आप सास गिरास, सब कुछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया,

धन रैणी सबतयूच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिसने आवे हर प्रभ जीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी श्रद्धा की रहत सच हृदय सतमुख कहत सची दृष्ट सचा आकार सच वरदय सचा पासर पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच सुमत श्लोक रूप नरेख न रंग किस तरह गुण ते प्रभिन तिस बुझाए नानक जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अवनासी प्राभ मन में राख मानुक की दू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाय किस गोय सर्व निरंतर एको सोई आपे बिना पेदान गहर गभीर गहीर सुजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सातरी की चरणी पाओ नानक कै मन हिवन राव मनसा पूरन सरना जोग जोगर पाया सोई होग हरन भरन जक नेत्र फोर दस का मंत्र न जने होर आनंद रूप मगन सद जाके सर्व थोक सुनिए घर ताक राज महराज जोग में जोगी तप महत पी सरग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाग लीला कीमत नाहे सगल देव हर अवगाहे पिता का जन्म के जन पूत सगल पुरुष अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान दे जनदास नाम त्या वैसे तेह गुण में जग परमाए जन्म रह फिर आवे जाए ऊच नीच तिस की स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाग रंग नाना पेकरा एक रंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ अविनाशी अहंकार नाना जित करे खिन माहे पूर रह पूरन सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीव नानक हर नाव नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खन ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत वेद प्राण नाम के धारे सुनम ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार

भगत गुरु प्रभु की नित नीत। एक ओट एक आधार नानक मंगन प्रभु सर, प्रभु की दृष्टि महा सुख होए। हार रस पावे विरला कोए, जिन चखिया से जन तृप्तन ने, पूरन पुरख नहीं डोला ने सुपर भरे। प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध के संग, परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलग। बटभागी जपया परसोए, नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ हो दयाल, सेवकी नु सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन मरण दुख भ्रम गया। इश्पुनी सरदा सपूरी, रव रहया साध संग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए।

भगत पाए त्रिय संसार। बिन भगती तन हसी शार, सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जद पाए विश्राम, सगल दुख गहोत नास नानक नाम जप गुण दास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर हे सुआउ, नेत्र हो वेख दर्श सुख होए, मन विकसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक वस्त दीजै करमय, गुरप्रसाद नाम जप लय, ताकि कहीं न जाए, नानक रहे सर्व समय।

अपे ही फिर जापस्पदि जब आकाश कृष्ण दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन सुमाद तब बैर विरोध के संग कुमात जाब इसका बन जह न जापत तब हर्ग सोग कोह किसे व्यापत जब अपन आप अपर ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी।

संकेत ठहरे। जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कवन निंदर कवन कत डरे, आपन चलित आप करने हर, नानक ठाकुर अगम्या पर। आप नसी सुख अपने आसन, तह जान मरण कहो कहा बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, ताव जम की त्रास कह हो किस होए।

नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जागे दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरुष प्रधान

स्पष्ट कह दे। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास गुरु गोविंद, मन अंतर की तुरै चिंद, आस अनित दया गोतरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर धन की भर लिहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार, खेम कुसल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चेत चेत भव नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप त्रै लुके निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लग हर रंग, जय जय शब्द अनाहद बाजे, सुन सुन आनंद कृपा प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल महान के माथे, नानक उदरे तिनका साथे।

जन ते छुटै जाके मस्तक करम प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत तिस जन आ।

अपीत है, अपीत है, तरमान है, निदान है, तरवर्ग है, असर्ग है, नील है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अपर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, चूज है, चंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, नरबूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसीक है, नरलंब है, असंभ है, गम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपरम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियंग प्रयाज छंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे, समस्ति बबूते कलंकन बिना निकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरम परम रूपे, नमो जो योगेश्वरम परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो योग योगेश्वरम परम जोगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह चाहन, नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे।

प्रत करता दो अर्ध अर्धंग अघंग ओघरता परम परम परमेश्वर प्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अपेदी अनामन अकामन समस्त

मोहन आदि सेख देश और न भेज जाकर रूपरेख न राग जतर ततर दशा विशा फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन भेखत।

अनामे तरभंगी तरकामे तरवर्गन तरवादे अगंजे अगादे सुवन सर पागे सु सर्वागे तरभुक्त स्वरूप है अशेज है अशुद्ध है के नकण प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नरक प्रवाह है सदा सदा है भवक स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है नरक सदा है भवक प्रवाह है अनुक स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी शांत अपांग है अनंग है अपेक है अलेख है परम है कर्म है अनाद है जगाद है अजय है अवय है अपूत है अदूत है नाश है अदास है अतंध है अबंध है अपक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है अनचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेक है अटा है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपड़ छंद तप्रसाद

प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जगता सर्वं मुक्ता सावल शांत ता प्रसाद नमो नरक नासे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं बभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाद बभूते अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे ना पोत्र ना पुत्र ना सत्र ना मित्र ना तात ना मात ना जात ना पात नरसाकं शरीख अमितो अमीक है सदावं प्रवाह है अजय है अजाह भगवती छंद त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमल कमाल है के हुसन जमाल है गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरीफल सकन है हरासल फकन है कलंकण प्रनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है जायक रहीम है समस्तल जबा है के साहिब करा है के नरकण प्रनास है बेहस्तल निवास है के सर्वल गवन है हमेशर अरवन है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परम परम ईस है समस्तल अदीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनल जमा है अमीकल अमा है करीमल कमाल है के जर जमाल है के अचलम प्रकाश है के मित्तो सवास है के अजब स्वरूप है के मित्तो बभूत है के मित्तो पसा है के आत्म प्रवाह है के अचल अनंग है के मित्तो अपंग है मदपार शांता प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मदाम अरबर गंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदाम अनछेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमत उदार जल थल अमंड दस विश अपंड जल थल महंत दस विश बेअंत

जगते सुरह ब्रह्मंड सह खल खंड सह परते पर है करना कर है अजपा जप है थपा थप है कृता कृता अमृता अमृत है अमृता अमृत है करना कृत है अकृता कृत है तनी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है बसंबर है कर्णालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है

राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासन तामसन सांत रूपे नमो परम तत्तन अतत्तन स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम बभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आंसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजा अला अप अब अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख काल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम गा अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे प्रियंग प्रयाज शांद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नरकाम बबूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सोधर्म बबूते सदा सच्चदानंद सतरंग प्रणासी करीम को निंदा समस्तल निवासी जाय बबूते गजाय गनीमे हरियं करियं करीमर रहीमे चतर चतर वर्ती चतर चतर भुगते स्वयंभव सुबन सर्वदा सर्वजोगते

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ निरंजन मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नगरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारूले बहुत अनंत लाटू मां दाणिया अनगा पंखी पौंदिया लै नसा सूए चढ़ पवाइये जन नानक पौंदिया गणत न अंत
1: मंत्र वाय सोए पय कृतन च सब कोई नच नच हसे चले सरोई उड़ न जाई सदना होए नचन कुदन मन पाचाओ नानक जिन मन पाओ।

0: जति सदा वै जुगत न जाने छड़ पै है करबार सबको पूरा आपे हो वै घट न कोई आख पर परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: वजू नानक काजता विखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जना खुद पाया।

ना हो तुट ना मल लगे ना हो जल न जाय तन सो मानस नानका जोगल चले पाय चौंकड़ मुलन आया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण।

रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नहीं किसे केरी बाज सच्ची नाए दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास। जास जपत एह अगन ना पोहत, जास जपत

सहजे ग्रह मह सहज उदासी, सहजे दुबिदा तन की नासी। जाके सहज मन पया आनंद, ताको भेटिया परमानंद। सहजे

पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुरिया भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गवन करहेंगे बपुरे कव

गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो नहचल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता

राम बिन सिमरन जैसे सींग छतारा बोलहे कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराही बिन सिमरन कुकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवां गुर के

हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले राओ। बिनसत नाही छोड़ न जाए, जह पे खांत है रहया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता।

पंध जो लंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए दर्श

दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई सब किच तुम ही ते हुआ, आप बनत बनाई दर्शन।

0: प्यारे गुरुसवारी साध संगत जी इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना शब्द बाणी पढ़दियां होईयां भुलां दे खिमा करना जी अज दसवें किताब धन धन श्री गुरु गोबिंद महाराज जी के प्रकाश दिहाड़ी मनाए जा रहे हैं। सो आप जी सर्व संगतां नूं महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाईयां होवन जी। आओ हुण अगला समां सरवण करदे हां। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हम एका जगत में आयो तरंगेत को दे पठायो हम एका जगत में आए तरंगेत को दे पठाए जहां तहां तुम तर्म बिसारो दुष्ट दोखियन फकर पिछारो एह काज सरा हम जन्मन समझ लो साधु सब मनमन तर्म चलावन संत वारन दुष्ट सबन को मूल उपारन।